0: अंत क्या आई है आई एक क्या जे जी है इस नागनीच क्या जे जी क्या आई है चिमशिगनोइच न्यू गया यो अंत क्या हो चाहिए है बोइच क्या नमस्तीश कुदे हो या बियो गया निया मग या लैरी हाउस एको नो है का गनी गांस के को ये इतना नहीं चाहिए ऐसे पुश के गनोइच मिस कनाई हो गया उदय दे चाहिए है अन्य अंत क्या ऐसे पिसे समझन है या अंदी स्पिनान हो चाहिए बेग आई उसके दम बेग इतना रह चाहिए एको इतका जो पुश को नहीं मिस कनाई हो गया उजी मग हाइड्रो कबेग गया उजी गया उसके दम चेसोज मुझी बाज उसी शाप तो है बियोज मीन काम का जीव गजीवे दो गया कि मुझी है जी जीवे बियोज का मुझी गेस उसी बीस दे बियोज दे अंत गया इतावन शके चेसी भी गया अन मग इस पस्तो दागनोशन है जो पुश की गनोच गया मिस कनो मिस्चेद की बान जी न्यांदम ते वीच दो गया इच इतावन शके एक उच्च बीच के अगर चीज़ का शुद्ध अगर चीज़ को गए निहम्पशन ही ना के उधर अन्यगा एक डबल चुवाल जेदो गए निहम्पशन को दे या बियो बर्टी वो पाची मार्ग जी दाव अंतन हाउ कार्टोक्शन है जो पुष्के गनो जो आई मेस गनो गया देखा इस उदाच एक या उमा नो जापत सीमा गनन चार्ली लूडर देखनन है यह कायम हाद के एक निहगा वित के दानिश कुछ चेद गया अन्य गया का स्पीच का जो पुष्का गनो चन मेस गनो
1: Well, Jeberti, what you got to do it one and I go, anyway, the late Larry House go, I as you meet that nego jipska janoj na da hydro e that as you pick as you pomato ayo electricity me going and so going to just seen you in case speech and that case speech and I go jipska janoj
2: nish going to send the right now to big and I the on the highway that you got up some thing it I guess a wire or they thing it and to the bay I was doing it then I did it and I was going, how can you stand this seat when I, Josie Sam, how can you get sick when you got to be in that kilometer 62? I thought I did it, beat up some time needs got the height, but the car says to be going, what's see you in a category two, you know, so I thought I was going to stay in that mission. Then I got this switch, G-G-Tars and I, इस उम्र का जितने घाय जो मुंह देश का जब इत्तेबियो में ऐसे वक्त चना दिया गया ऐसे था जी दिन छोटा नहीं जगा जी आम चना का मैन है घाय जो ऐसे सेन या बेग है बाबी ने कापो हर में बेग ऐसे सिद्ध गए जी वो आम चढ़ गया है घाय जो मैं गए इतना नच गए एलजी वन का प्रोटेस्ट ना Okay, and you look diagnosed here. I got a which got wish to cause us to be yoga. I look very chairing again here. I'm going to get done of them. An octagonal guy, high joy guy. I got an hot cheer that has a scratch bag not to the
1: You genez, you datum jayo, jay eight is, come again, jay, which back an issues neg and I did snaz eight nanoj.
2: Nigga is the same, I use the SS, I don't need a ska, could you eat shredge? Ungag, mean just sinry, I done how I speed into one gate shredge, eight nanoj. Wind just sinry, shredge into a desk on the gay spear.
1: So one and I go you book taken us and I or cheese jupska zenis now how's your righted?
2: Yeah, old you get none of the me on how and just some soda. I'm just saying and I do not talk to the high joy. I got on how cheer day. Yeah, and I got a dish like that. Yeah, on how old you want your host. Mother, you stagnate again. I'm stagnant again. I wouldn't get a great travel again. And you know, talking to the guy, I got me here. I'm going to get a new job. I got a new job. I got a new job. I got a new job. I got a new job. I got a new job. I got a new job. I got a new job.